नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं FM ZO OI 100.7। आज सुबह के लिए हिंदी का पहला सेगमेंट शुरू हो चुका है। मैं हूँ RJ एंजिला। मेरे साथ दोबारा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस सेगमेंट के लिए हम सबसे पहले सुनेंगे बधाई हो बधाई मूवी से तेरी जिंदगी प्यार है।

दोस्तों, ये गाना था बधाई हो बधाई मूवी से, तेरी जिंदगी प्यार है। एफएम जो ओ से प्यार बांटते हुए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला गाना होगा शान साधना सरगम की आवाज में, हम दिल के।

दोस्तों, ये गाना था थी अमो, जिसे लिया गया है दम मारो दम मूवी से, और इसे गाने वाले हैं कोई नहीं बल्कि सुनिधि चौहान और ऐश किंग। इससे पहले कि हम अपने अगले गाने की ओर बढ़े, हम आपके संदेश को पढ़ते हैं। आरजे इंजिला नमस्ते इलाप्ले ले तुर्खा विकुंगतिया एल आर अमामित पापा रिपू जेल जामा पुलियन ते नुपा मुआल फेंग ले इतान करोन लाने अरोन्त्या नाक्त्या पा बेल खोलिरिन। हमारा अगला गाना होगा दोस्तों हमारी अधूरी कहानी, और ये टाइटल ट्रैक सॉन्ग है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को गाना बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस सिंगर ने गाया है, जो कि कोई नहीं बल्कि अरिजीत सिंह है। तो दोस्तों, सुनते हैं हमारी अधूरी कहानी गाना।

दोस्तों, ये गाना था तेरा होने लगा हूं, जिसे लिया गया है अजब प्रेम की गजब कहानी से। और इसे गाने वाले हैं प्रीतम, आतिफ असलाम और अलीशा चन्नाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये गाना बहुत पसंद आया होगा। हम आपके संदेशों को पढ़ते इससे पहले कि हम अपने अगले बहुत ही सुंदर गाने की ओर बढ़े, जेल अल्जामा भेजते हैं। हेलो आरजे, नमस्ते, सुप्रभात। नेक्स्ट सॉन्ग इदुति पुई ने इन तान ले जो रम रिमोय एफ एम जो ओय गाय थतु ते जोंग जोंग तान ले कंट्रोल रूम ड्यूटी ले ड्यूटी ऑफिसर तान पो अरोन तिया तिन पुसांग पुसांग मामा ते नुपा मिशन वेंग खांग मी ते मे म्या लविन अरोन तिया मेंग मोय ते अन आरजे एंजिला नमस्ते ड्यूटी नाम ले अरोन तिया थैंक यू गलोम लुत तो के। दोस्तों, हमारा अगला गाना होगा वार्ली ब्रदर्स और जसपिंदर नरूला की आवाज में दर्दा मरिया।

गाना था वाडली ब्रदर्स जसविंदर नरूला की आवाज में दर्दा मारिया। हमारा अगला गाना होगा दोस्तों शान और अरका याग्निक की आवाज में इश्क में, और इस गाने के साथ इस सेगमेंट के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी। आप सभी सुन रहे हैं FM ZO 100.7। दोबारा मेरे साथ फिर जुड़िएगा ठीक 11 बजे। तो दोस्तों आइए हम सुनते हैं शान अलका याग्निक की आवाज में इश्क में।

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत करती हूँ FM Zone 100.7 पर। आज इस सुबह के लिए आप सभी का हिंदी के दूसरे सेगमेंट पर फिर हम सुनेंगे हिंदी के गाने। और ये गाना होगा 90s के बहुत ही सुंदर सुंदर गाने। दोस्तों, सबसे पहला गाना होगा पहला नशा जिसे लिया गया है, जो जीता वही सिकंदर। तो दोस्तों, हम सुनते हैं हमारा पहला गाना पहला नशा।

पहला नशा जिसे लिया गया है जो जीता वही सिकंदर मूवी से। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा आग लगाना होगा कुछ ना कहो जिसे 1942 ए लव स्टोरी मूवी से लिया गया है।

दोस्तों, ये गाना था कुमार सानू की आवाज में, कुछ ना कहो, जिसे 1942 ए लव स्टोरी मूवी से लिया गया है। दुर्गेश जी ने बॉर्डर मूवी से तो चलो गाने की फरमाइश की है। दुर्गेश जी, फिलहाल अभी हमारे प्लेलिस्ट में इस गाने को ये गाना नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि 2 बजे जब आरजेस चॉइस का सेगमेंट होगा तो मैं आपकी ये फरमाइश जरूर पूरा करूंगी। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला गाना होगा आते जाते हंसते गाते, जिसे मैंने प्यार किया मूवी से लिया गया है।

दोस्तों, ये गाना था चलते चलते, जिसे मोहब्बते मूवी से लिया गया है और इसके गायक हैं, हम कहते हैं उनका नाम उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित और सोनाली। जी हाँ दोस्तों, इस गाने को केवल सिर्फ एक या दो गायकों ने नहीं गाया बल्कि चार लोगों ने गाया है और ये गाना बहुत ही फेमस रह चुका है। पूरी मिजोरम के लोगों को भी ये गाना बहुत ही पसंद आता था। हम आपके संदेशों को पढ़ते हैं। सबसे पहले लल दिन पुया फलकोन भेजते हैं आरजे, प्ले ले तुर खान नम अतान ले लौंगाई थवे जोंग जोंग तान, कछियान ते दौर पे मी तान, पापा रे पु तान ले कुंग ते अतान अरोंतिया। गुड मॉर्निंग आरजे, वीकेंड मनवाम ओ व्हाट्सएप कमांग थे लो मा से अरुक्ते इन एफएम जो ओही कलो ngai थर्वे रिंग छीना इन ति फिल टॉकिन अरंतिया। नेक्स्ट इप्ले दे तुरखा छियान पा हिकमत अली ले ओमोय एम एम मे नो आर जे वी एली चुआन चुआन नंग मा ले एफएम जो ओय ngai थतु जोंग जोंग तान अमोस शिलोंग इन अरंतिए। दोस्तों, हमारा अगला गाना होगा न तुम जानो न हम, और इस गाने को

दोस्तों, ये गाना था ना तुम जानो ना हम, जिसे कहो ना प्यार है मूवी से लिया गया है। और इससे गाने वाले हैं द वन एंड ओनली लकी अली। लकी अली हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और मुझे भी आशा है कि आप सभी को भी वो बहुत ही पसंद आते होंगे। हमारा अगला गाना होगा दिलवाले दुल्हनिया मूवी से लिया गया, हो गया है तुझको जो प्यार सजना। लेकिन हमारे अगले गाने की ओर बढ़ने से पहले हम आपके संदेशों को पढ़ना चाहेंगे। गुड बॉय भेजते हैं आरजे एंजला दार कुआ चंगिन दार थुम थिंग करेन कन्ने दोन लो चुंग चुंगिन कलो लंग शाम शाम कंगाई थरें चौती करेन रिपोर्ट थपे अरंतिया इन स्वीट थे खोप में लोंगाई थर चर रो ओ जेलल जामा भेजते हैं आरजे एंजला। नमस्ते नमस्ते। नेक्स्ट सॉन्ग इड्यूटी पुइनेन इन तान ले जोरम रिमोय एफएम जो ओय ngai thatu te tan po o tin ka RJV li mei lavin arontia inon ngai ven china in ti lomon thei khop mei vi kung te an RJ Angela din puya fal kon hi a fel chin ti ro atian ya fel chin khop mei ron lam tu ma hi aron lam lam mei ngai lo chewa ron dedicate sham sham china mi aron thlan sak sham sham china next kha din puya fal kon le itan o arontia विकुंग ते बहुत बहुत धन्यवाद के पोमी इलम में गाय लवा कलोम नुतुक। हमारा अगला गाना होगा हो गया है तुझको जो प्यार सजना।

दोस्तों, ये गाना था हो गया है तुझको तो प्यार सजना। जिस तरह हम सभी को, आप सभी श्रोताओं से प्यार है, वैसे ही ये गाना आप सभी को इनडायरेक्टली संदेश भेजती है। दोस्तों, हमारा अगला गाना होगा जादू तेरी नजर, जिसे डर मूवी से लिया गया है। और इस गाने के साथ आप सभी से अलविदा केवल सिर्फ इस सेगमेंट के लिए लूंगी। आप सभी सुन रहे हैं FM जो 100.7, मैं हूँ एंजिला। एक और बार जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, जुड़े रहिएगा। मैं ठीक 2 बजे फिर से आऊंगी। और जानने से पहले जॉन अगस्त बोई का बहुत ही प्यारा सा संदेश पढ़ूंगी। वो फिलहाल मुझे बहुत जान रहे, वो भेजते हैं छक छक नुला दोम ते नमस्ते नेक्सितान अरंत। Good boy yan. Tukina til don aron thona. Oh yeah. Awa rau pui vi hei. Puan chui kol. Boi tin. Ani ming pui ne na chengin. Usha puan chui kol. Adonge. Aron tia. Eh. Kan lom pui kop. Mei te. Tikhan kor moi deo. Deo te kha. Lo chui nan lo mang se la. Kan lom pui tak zeta ni. Tin lo she don ya. To dosto, hamara agla gana hoga. Jadu teri nazar. Jisi dar movie se liya gya hai.

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत करती हूँ FM ZO 100.7 पर। मैं हूँ आरजे एंजिला। दोस्तों, हमारा ये सेगमेंट इस सुबह के लिए हमारा आखिरी सेगमेंट होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा 2:30 बजे तक। और इस सेगमेंट में ये आरजे चॉइस है, तो मुझे मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है, मुझे लगता है कि आप सभी का चहेता गाना होगा। तो सबसे पहले सुनते हैं हम लोग कैसे हुआ गाना, जिसे कबीर सिंह से लिया गया है। इसको गाने वाले हैं विशाल मिश्रा और मनोज मुंतशिर।

दोस्तों, ये गाना था इश्क वाला लव, जिसे गाया है विशाल शेखर ने, और ये गाना लिया गया है दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से। इससे पहले कि हम अगले गाने की ओर अपना रुख मोड़े, हम आपके एक संदेश को हर एक गाने के बाद एक संदेश पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सुने पढ़ेंगे जॉन ऑगस्ट बॉय की तरफ से, वो भेजते हैं एंजिला ट्रॉटकिन होला द्योति ले वतला इहो को आफिम खुला नेक्सिता नरोंत्या थैंक यू लुत्तुक जॉन ऑगस्ट बॉय वी कुंगते अन आरजे एंजिल इतला इन चो चांग नेचिन मासे इतला इतलाविंग इतलाविंग कन ओम नीति लौशन अन फवांग छे नेक्स खा कन पनि तान अरन त्या ओली विकुंगते नेक्स ही कन पनि तान गे पुन करन लाना जोन अगस्त पोई तान पुन करन लान लिया लिया वनी। हमारा अगला गाना होगा तू जानना, जिसे लिया गया है, जिसे गाने वाले हैं दोस्तों आतिफ असलाम। लेकिन इस गाने के बाद ही मैं बताऊंगी आपको कि ये गाना कौन से मूवी से लिया गया है। तो दोस्तों हम सुनते हैं

दोस्तों, ये गाना था आतिफ असलाम की आवाज़ में, तू जानना। हमारा अगला गाना होगा दिल लगा लिया, और इस गाने की फरमाइश की है दुर्गेश, नहीं, हाँ, दुर्गेश जी ने की है। तो हम आपकी फरमाइश को नज़रअंदाज नहीं कर सकते दुर्गेश जी, तो खासकर आपको ये गाना सुनना पड़ेगा। आपके लिए हम डेडिकेट करते हैं दिल लगा लिया, जिसे गाए हैं अलका याग्निक और उदित नारायण जी ने।

दिल लगा लिया। और ये गाना था अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में, और इस गाने की फरमाइश की है दुर्गेश जी ने, और वो कहते हैं, वो रिक्वेस्ट करते कि हम उनके परिवार के नाम को एक बार पढ़ दें। सबसे पहले है राधेश्याम जी, फिर वंदना जी, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दूर से हमें सुनते हैं, हमेशा हमें सुना करिएगा। और हितेन दास जी ने फिर से हमें सलामी भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्फथांगा भेजते हैं, इप्ले ले तुर्खा कबुल्ला हुआन सामे तितान ओ वाई में चोंगबोला सेक्शन ते कन नतलांगा रुंत्या नतलान पा आ लांपुई थे तुर ला कन प्ले गाल गे अंगाई दोन ने चो। तो दोस्तों, हम अगला गाना सुनते हैं, हमारा गाना है राधा, जिसे स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर मूवी से ही लिया गया है।

दोस्तों, ये गाना है राधा, जिसे स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर मूवी से लिया गया है। हम अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला गाना इस सेगमेंट का आखिरी गाना होगा और इस गाने के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी। आप सभी सुन रहे हैं FM ZO 100.7 में, हूँ RJ एंजिला। आप सभी से हम फिर बहुत जल्द हमारा मुलाकात होगा। दोस्तों, इस सेगमेंट को क्लोज करने के लिए हम ये गाना सुनेंगे, जो है देसी बॉयज मूवी से लिया गया है। गाने की बोल है सुबह होने दे, और इस गाने के साथ खुशी खुशी आप सभी को मैं अलविदा कहना चाहूंगी।

0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और रक्षा सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत की 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। श्री DK शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल रहते हैं तो अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर विचार किया गया। सिचुएशन रूम में हुई यह बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है आकाशवाणी आइजोल और आप सुन रहे हैं 100.7 पर एफएम जो आपकी आरजे किमकिमी के साथ हाजिर हैं इस खंड में हिंदी गीतों के साथ। और चलिए इस खंड की हम शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। ये गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हम समर्पित करना चाहेंगे और साथ ही साथ दीजिए हमारा साथ पूरा इस खंड का। और चलिए इस खंड की हम शुरुआत करेंगे अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज के साथ, तेरे हवाले।

ये था अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की खूबसूरत आवाज में, और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर FM जो आपकी आरजे किमकिमी के साथ। हितेंद्र दास जी, आपका हमें संदेश मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। यूं हमें प्यार देते रहिए, यानी हमें, यानी कि FM जोई को। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत भी होने वाला है बहुत ही खास, और इसे आवाज दिया है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने ही। ये गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हम समर्पित करना चाहेंगे, तो चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का।

क्षमा कीजिएगा दोस्तों, ये था श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खां की आवाज में। और चलिए अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आपके संदेशों की ओर हम जरूर डालना चाहेंगे। और यहाँ पे भी अल चुंग थो कदो आई थर एंग आई प्ले ले तुर जोंग जोंग खा आई थे तुर जोंग जोंग तान ले लथन सक्तु नहीं वे आई लो के मा तान का इन लाने अरुण दिया नेक्स्ट इतान लिया ले ओ भी अल चुंग थो और वी कुंग ते आने ना और जे किम किम नेक्स्ट कमिंग मोई ते अमा हुनी जे लल जामा ले दिन दिन पुया फल कौन ते तान अरुण ती आ मैं मोई ते हनी ना जे सी नमस्ते न्यूती नाम ले कलोम एम एम ए। और चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा बहुत ही खास और ये गीत आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए हम समर्पित करना चाहेंगे, खास बी एल चोंगथू इनके लिए। हाँ, अगला गीत बी एल चोंगथू के लिए हम ये गीत, चलिए ये होगा श्रेया घोषाल की, श्रेया घोषाल और विशाल शेखर की आवाज में।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में, और आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर एफएम जो वाइब की आरजे किम किमी के साथ। और यहाँ पे ओमेगा सांग ते आ लिखते हैं छियांग ते किम किम दम छा एम और दम छवे टोक टोके जनिन तलाई थिंगा मल सोमना मिन पितु मिंगिन दो सकना कहलान चे प्ले ले इप्ले तुर ते ngai thatu te tan le abik ta kini tan le aw le hun man nuam le aron ti a kanwan lom thin e mong omega sang te a bahut bahut dhanyawad aapka। aur yahan be mal som ki mi mar hian in arjun kim kim chi bai diu ti nuam le a iple le tur kha du sak ta ka la mino min lo than sak tu tlangwal hmel tha vi kung te tan aron ti ani hei vi kung te khan longai thlaim o malsom ki mi hian in hla aron thlan sak che o aron thlan che a next kan play tur hi vi kung te tan liao liao ni se chuanin lz sailo hian in rg a kim kim kapuar kapuar tapeng ponge zanria po eva इवल ए मन ओम लो वे प्ले लिस्ट ते हरोन ते निया तिरो हे जेंड्रे कन ला ए मन मे उलो चु नि ए चलिए आपके संदेशों को हम पढ़ते भी रहेंगे, साथ साथ गीतों का आनंद भी हम लेते रहेंगे। और अगला गीत होने वाला है बहुत ही खास, वी कुंग दिया तान। चलिए अगला गीत होगा आप सभी के लिए, हमें गीत हम पेश करेंगे, लेकिन हम इसमें किसने गाया है ये हम आप सुनिए और बताइए, ठीक है? ये मेरे पसंदीदा गीतों में से भी एक है, तो चलिए इस गीत का आनंद लेते हैं बॉडीगार्ड फिल्म से।

ये था दोस्तों ऐश किंग की आवाज में बॉडीगार्ड फिल्म का गीत। और चलिए वक्त हो गया इस खंड के आखिरी गीत का। खंड का आखिरी गीत होने वाला है बहुत ही खास। और चलिए इस खंड का आखिरी गीत हम बजाते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस सुनेंगे नहीं सुनते हैं सीजेड हेलो आर जे हुन मन नामले जनरे आलम होई फुत अंगे ओ अरुंती आ। तो यहाँ पे आपके बहुत संदेश आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ ये हितेंद्र दास जी ने हमें भेजा है, ये सिंगर का नाम हमें भेजा है ऐश किंग और क्लिंटन की आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद हितेंद्र दास जी आपका। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, आपको सिंगर का यानी कि संगीत का नाम, संगीतकार का नाम पता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। शायद मैंने शुरुआत में शायद थोड़ी सी गलती किया होगा, हाँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो इस खंड का आखिरी गीत होगा अतीफ असलम और एलिशा चिनॉय की आवाज में। गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हम समर्पित करना चाहेंगे। लौटेंगे हिंदी के कुछ और गीतों के साथ, कुछ और गीतों के साथ लौटेंगे जरूर 7:30 पे। और इस खंड का आखिरी गीत अतीफ असलम अलीशा चिनॉय की आवाज में गीत आपसे प्यारे श्रोताओं को हम समर्पित करते हैं। और इस गीत के बाद आपका साथ देने आएंगे आरजे फ्लाइट लुआंगा, उनका साथ दीजिए और सुनते रहिए 100.7 पर FM। जो ये रहे इस खंड का आखिरी गीत।

0: ये है आकाशवाणी आइजोल और आप सुन रहे हैं 100.7 पर FM जो आपकी RJ किम किमी के साथ। और चलिए बढ़ते हैं, इस खंड का पहला गीत आज का हिंदी का दूसरा खंड है। तो इस खंड में आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों को, तो वक्त को बिल्कुल जाया नहीं करते हैं और सुनते हैं अनु मलिक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।
1: क्यों इतना पीता है? सब लोग बोलता है तुम एक नंबर का बेवड़ा
2: है। मैं बेवड़ा हूँ क्या?
3: नहीं नहीं।
2: देखा मुझे इसका नशा कहाँ चढ़ता है? मुझे तो तेरे प्यार का नशा यहाँ घसीट कर लाता है। तुझे मालूम मेरे दिल में तेरे प्यार की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है।
4: अरे कौन सी फैक्ट्री है भाई?
2: रोमांस की, रोमांस जॉनी एंड जूली कंबाइंड। मेरी शादी के

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको ले लेने मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

तो दोस्तों कैसा लगा गीत? उम्मीद है आप सभी को गीत जरूर पसंद आया होगा। और माँ हुनी रम लोधिया निनार जी किम किम चो ए पाइन कल कलौंगाई था अंग चे अरुणती अनि वाहन लोम ओम थ्रीन एम चोखा तुई देम लो ए दोनिया ओ चोन मिन लो ए खे बोकला। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा अनु मलिक की आवाज में, नहीं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में होगा। और चलिए जवानी फिल्म से आप सभी के लिए, उम्मीद है ये गीत आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम।

अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज में, और आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर FM जो आपके आरजे किमकिमी के साथ, और यहाँ पे आरजे कलोलंग वे ए तलाई लम चिबई दुती नुआम ओ अरुंती आ कलोम एम ए में नंगपो तलाई लम चिबई ले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और ऋषि कपूर की आवाज़ में होगा, ये बहुत ही खास, पूछो ना यार क्या हुआ। तो आपके पसंदीदा गीतों में से एक ज़रूर होगा, मुझे इसी उम्मीद के साथ चलिए इस गीत का आनंद लीजिए और बताइए आपको गीत कैसा लगा।

तो दोस्तों कैसा लगा गीत? उम्मीद है आप सभी को गीत जरूर पसंद आया होगा। और आप सभी सुन रहे हैं 90.7 पर FM जो आपके आरजे किम किमी के साथ। और के गई थे यानी नमस्ते आरजे किम किम नंगपो नमस्ते ले कनवा इन तुम खात वे ले रोनते यानी आते रोदी उती ते ही अखात वे नियांगे इलोदम ट्राइम के गई थे या कलो गई थे वे रंग चे नियाई प्ले ले तुरखा आरजे वी ले तान कलाने रोनती आ ओले आरजे वी ले तान निसे एल जेट साइलो यानी किम किम मोई थे तप अरंती आ moi thei tap ti lai takha kan wa lom em ti ro moi lo in ti kha kan lau ve thin box ya to badhte hain agle geet ki aur agla geet hoga ye raha Asha Bhosle ki hi aawaz mein hoga aur Asha Bhosle aur Mohammad Rafi ki aawaz mein।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। उम्मीद है आप सभी को गीत जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी हमारे इन गीतों का आनंद ले रहे होंगे और साथ ही साथ हमें प्यारे प्यारे और मीठे मीठे संदेश भेज भी रहे होंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। आर्ज किम कि मोय थे दब कदु थे दो किम कि मी में फकना आनका हि चु अथुम थे बॉक्सिया ते रो कन चियरिंग लो मे आंगा जेट आ मिन लो छ थ्याम दोन ने ओ आरजे प्ले ले तुरखा नंग मा तान ले लवाई से तु जोंग जोंग तान ले कछ्यानते वेंग शंग शंग मी ते तान आ जो ने या कछियार सवाल एम लवांग चमोके रोन लंग हरा लल दिन पुया फल कोन वेंग लाई तेताना रुंती आ। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले गीत की ओर फटाफट, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा बहुत ही खास, आशा भोसले जी की ही आवाज में होगा। तो तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा।

दोस्तों ये होगा इस खंड का आखिरी गीत, आशा भोसले की आवाज में, और तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। ये गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हम समर्पित करना चाहेंगे और लौटेंगे हिंदी के कुछ और

गीतों के साथ जो होगा आज का हिंदी का आखिरी खंड ठीक 9:02 में, 9:02 पे लौटेंगे हिंदी के कुछ और गीतों के साथ। तब तक यूं ही हमें प्यार देते रहिए और सुनते रहिए 100.7 पर FM जोय।

यह आकाशवाणी एजोल और आज का आखिरी खंड हिंदी का आखिरी खंड हाजिर है हिंदी गीतों के साथ। मैं हूं आपकी आरजे किमकिमी, तो दीजिए मेरा साथ इस खंड में। तो चलिए इस खंड की हम शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। और चलिए उदित नारायण की आवाज में हम अगला गीत सुनेंगे, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में।

ये था अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। उम्मीद है आप सभी को गीत जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, वक्त को बिल्कुल जाया नहीं करते हैं और सुनते हैं अगला गीत। अगला गीत होगा कविता कृष्णमूर्ति और शान की खूबसूरत आवाज में।

शान और कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत आवाज में, और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर एफएम जो आपकी आरजे किम किमी के साथ। अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आपके संदेशों की ओर हम डालते हैं, जिसे आप सबने हमें बहुत ही प्यार से भेजे हैं। मामूनी रमलोदी, इन्होंने हमें लिखा, आरजे किम किम हम तो दीवाने हुए यार, नल्लतुक बादशाह फिल्म अमित हो, वो लड़की जो सबसे अलग है, मामूनी यानिन। तो चलिए आपकी फरमाइशें सराखों पर, तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पे ये रहा अगला गीत, मामूनी रमलोद की फरमाइश पे।

अभिजीत की आवाज में, और उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा माहुनी की फरमाइश के गीत। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले गीत की ओर। अगला गीत होने वाला है बहुत ही खास, और अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाज में होगा, तुम्हें जो मैंने देखा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.7 पर FM जो एप की आरजे किम किमी के साथ। और चलिए अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले फटाफट एक नजर आपके संदेशों की ओर हम डालते हैं। पार पारे पू आरजे

kimzenin chu ila play in a zirbo ka kalwang liam tlat me abik te kin nula se nula so mi azanin chu kalwang liam zual izaitir le turpo kha nula mel thale fel em em so mi se song in uluk taka alawngai thaka tan aron ti a dikan hamte hian in i play cha i play tha thin le me hlanal i shia in kati aron ti a bod bod dhanyawad apka ke ngai ti hianin आपका संदेश पूरा नहीं आया है शायद पीसी लल जेसिका इ वन रंजियाक जौवे ति रोके ngaitia पीसी लल जेसिका इ पर पारे पु ले आरजेवीएल तान ए प्ले टूर का करो करन थन सके हरन ती आ तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले गीत की और अगला गीत होगा अभिजीत ओरल का याग्निक की आवाज में गीत के बोल हैं आंखों में बसे हो तुम

अभिजीत ओहरल के अग्नि की आवाज में और इसी गीत के साथ वक्त हो गया इस खंड के आखिरी गीत का। खंड का आखिरी गीत आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए, खासकर जिन्होंने हमें ये प्यारे प्यारे से संदेश भेजा है। आपके संदेश ही हैं जो हमें पूरा करता है, हमें यानी कि एफएम जवाई को। तो चलिए इस खंड का आखिरी गीत होगा अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में। गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हम समर्पित करना चाहेंगे। यूं ही अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमें प्यार देते रहिए। और इस गीत के बाद आपका साथ देने आएंगी आपकी अपनी आरजे आरजे फुलेनाई, उनका साथ दीजिए। वो आएंगी फेसबुक पे लाइव, तो साथ दीजिए उनका, ठीक है? तो यूं ही प्यार देते रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी गीत के साथ आप सभी को छोड़े जा रही हूं और आप सभी को आपकी आरजे किमकिमी की तरफ से शुभ रात्रि।